तो आज ही संपर्क करो रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 95926688 पर व्हाट्सएप करीने के बजी सोशल मीडिया ना कोई पण माध्यम मा टेक्स्ट मैसेजेस थी मस्त रहो व्यस्त रहो सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

पक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

हेलो हाय नमस्कार, वेलकम अगेन माय शो सॉन्ग्स महफिल। जानम देख लो मिट गई दूरियां,

हेलो हाय नमस्कार, दिस इज आर्जांजलि। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर पर माय शो सॉन्ग्स महफिल। आजे मैं तमने घणा बधा एवा सॉन्ग्स संभळाव्या जे क्यांक ने क्यांक खोवाई गया हता ने तमे भूली गया हता अने मैं फरीथी तमने याद अपावी दीधा। हवे आ सॉन्ग सांभळीने तमने केवुं लागे छे अने मारी आ सॉन्गनी जे रिसर्च छे तमने केवी लागे छे

शहर नवाज इतले 90.4 एफएम रेडियो बालनपुर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट केळवणी मंडळ संचालित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ शहर नी पोतानी ओळख आ शहर नी पोतानू टॅलेंट युवाओ माटे जागरूकता आणि विज्ञान ना प्रचार प्रसार ना तमाम कार्यक्रम साथे समुदाय नी तमाम आवाज ने वाचा आपतू एक मात्र प्लेटफॉर्म इतले 90.4 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो पालनपुर सांभळता रहो मस्त रहो खुश रहो 90.4 FM.